विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948। आज रविवार, वैशाख कृष्ण द्वितीया, अर्थात 3 मे 2026।

श्रोते हो, भक्तीसुधा इंटरनेट रेडिओवर आत्ताच आपण ऐकलीत नामसाधना, प्रस्तुती भक्तीसुधा।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने, गाया है मन्ना डे ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948। आज रविवार, वैशाख कृष्ण द्वितीया, अर्थात 3 मे 2026।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने, गाया है मन्ना डे ने।

श्रोताओं, सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।